0: no religion, I would think, but
1: we
0: have not moved away from mythology at all. And from early childhood, you understand that Krishna can do mischief. The boy Krishna can steal butter. He can be scolded by his mother and all that. But you can also know he can has Sudarshan Chakra. He can send it. He has got miraculous powers. But you can balance both of them together.
1: लेकिन ये चीजें कंफ्यूज करती हैं बच्चों को.
0: But we were you confused? I was not confused. I had grandmother, grandfather telling stories, and we are not confused. But I feel if you don't come from such an atmosphere, the stories can be shocking. See, in the stories of in origin Greek original Aeschylus stories, you know, the two feuding families. They invite the elders of the another family, steal, abduct the children, cut them, cook them, and feed them to their own family members.
1: Jee.
0: It is shocking, right? But the thing is, it comes from mythology, where an extreme can be imagined. You know, a moral is illustrated, or a value is illustrated with extreme situations. It's not the same thing as a real thing happening. A person does not have a third eye. You know, you must see it as metaphorically as well. You should learn this, but that training does not come from school formal education. So,
1: बिल्कुल बहुत सही बात कही. तो अब पूछते हैं कि सुगंधा आपके पास क्या सवाल है कोमल जी के लिए.
2: नमस्ते कोमल जी.
3: कोपल
2: कोपल जी सर. तो जैसे I'm born here, right? तो it's so many cultural expectations, है ना? तो do you think the gap's always going to be there where we're trying to fit in, or is the point where we find our identity being Indian Australian, or we keep going to be always going to have like the Indian culture and then the Australian culture, and we don't know where we're fitting in?
3: Mm-hmm. So in economics we talk about inequality, and there's inequality everywhere. Everywhere there's inequality. अगर आप income में देखते हैं तो poverty है, rich है. अगर आप gender में देखते हैं तो अभी एक discussion हमारा चल रहा था. अगर आप रेस में देखते हैं तो आपको ब्लैक वाइट कल्चर्स में बहुत बहुत रिसर्च है जो बताती है देयर इज ह्यूज गैप्स, राइट? सो वी कैन नॉट ब्रिज दोज गैप्स, राइट? व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इज टू ट्रेन आवरसेल्व्स एंड बिल्ड पॉलिसीज एंड ट्राई टू ब्रिंग अप सिस्टम्स दैट विल सपोर्ट पीपल. सो फॉर एग्जाम्पल जो ये गपशप विद आई का इनिशिएटिव है, इट्स ट्राइंग टू टेक एंड हमने बड़ा अच्छा टैग लाइन लगाया है, इन द वर्ल्ड ऑफ AI एवरीबडी नीड्स एन आई, यू नो. सो That's the thing that, you know, we go to AI for our questions, right? But AI does not have the cultural values, the traditional values that we are brought up with, you are brought up with, right?
2: Yep.
3: So what I and all people involved in this initiative is going to do is trying to help you build your personality, your careers in a way which does not sound like, oh, you are too Indian or you're too Australian. Because if they have done it, if I has done it, if Richa ji has done it, if Sunil ji has done it, so can you, right? What we didn't have is the support system. You know how it says it takes a village? So we don't have that support system, and that's what this whole program is going to do. Is we're going to build it together in a way which supports you in best way possible.
0: Very, very interesting.
2: Yep. Based on that question, don't you think it would be harder for our parents more than us, because they're also mixed between what upbringing they should give the kids to, the Indian culture, or should they do with the Australian culture, like that mixture? What is your thought?
3: So I'm a parent of three, so I hear where you're coming from.
2: Yeah.
3: And I have seen those systems professionally.
2: Yeah.
3: But I am never going to tell my daughter to call me by my first name, or to call any uncle and aunts by their first name.
2: Yep.
3: Right. I know that's what they're going to be doing outside. As a parent, you have to keep a certain sort of a discipline.
2: Yeah.
1: Or guide them
3: in a way which. Later in life, you'll appreciate the system that you've been brought up with. You'll be proud of the system that you'll be brought up. Exactly the mythology story. When my grandparents used to tell me those stories, I used to be in disbelief sometimes. But then you take it, your generation asks questions. That's where our generation was a little bit behind in that sense.
2: Yeah.
3: We were not allowed to ask questions. We were not, I mean, it's not traditionally, culturally, the best thing to question people who are older than you, right?
2: Yeah.
3: So you ask questions, and that makes us think as parents as to how best to address those questions. But you cannot यू कैन नॉट कन्वे ऑल आंसर्स टू योर
1: चिल्ड्रन जी अगर हिंदी में बोले तो है ना ज्यादा
3: आप अपने बच्चों को आप अपने बच्चों को हर जवाब वैसे नहीं दे सकते जैसे आपकी कम्युनिटी दे सकती है. मान लीजिए ऋचा जी हैं और ऋचा जी हमारे आई वाले प्रोग्राम में हैं गफ्फर भाई में और मेरे को अपनी डॉटर से अपने चिल्ड्रन से एक ऐसी टॉपिक पे बात करनी है विच माइट बी अ लिटिल बिट स्टिग्मेटाइज्ड इन द सिस्टम. बच्चे इज नॉट कम्फर्टेबल विद अस, हम कम्फर्टेबल नहीं बच्चों के साथ. बट ऋचा जी नोस, उनको पता है कि कैसे इसको नेविगेट करना चाहिए. कोई चीज़ जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ कम्फर्टेबली वो बोल सकती है. सो आई थिंक इन दैट वे अगर आपके 5-6 जन 7 जन बड़े हैं ये आपके लिए भी जाता है. कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप मेरे से नहीं पूछ सकती हैं, मेरी बिटिया मेरे से नहीं पूछ सकती है. हर पेरेंट का एक अलग रिलेशनशिप होता है अपने चाइल्ड से.
1: उसको उसमें आपके इस पैनल में कुछ लोग होंगे जो
3: इवेंचुअली कुछ लोग होंगे, हम इसको बढ़ाएंगे और इसके अंदर हम ज़्यादा लोग रखेंगे, जेंडर डाइवर्सिटी भी रखेंगे. ऐसा नहीं है कि आई ही है, मेल्स फीमेल्स अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स. आई इज़ क्वाइट सीनियर, हम थोड़े 70s 80s के जो पेरेंट्स हैं, 60s के जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ यहाँ बिल्ड करी है उनको भी सपोर्ट करेंगे. मेंटरिंग आपको प्रोफेशनली भी बहुत जगह मिलेगी अगर आप जाएंगे तो देर इज़ लॉट ऑफ सपोर्ट मेंटरिंग फॉर यंग एट्सेट्रा. बट वहाँ पर वो कल्चरल एस्पेक्ट कम रहता है. राइट, हम मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको स्ट्रगल करने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए इन अ वे जिसके अंदर आप समझ पाएँ कि हमारी चैलेंजेस क्या हैं, इंडियन सिस्टम में कैसे मैनेज किया है उसको, ऑस्ट्रेलियन में कैसे किया और हम उसका क्या एस्पेक्ट लेके आगे जाना चाहते हैं. राइट,
1: बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये शुरू कर रहे हैं आप लोग. तो हमारे कुछ श्रोतागण जो है माता पिता अभिभावक भी हैं और बच्चे भी हैं इसमें, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बेटियों के लिए, वो ऐसा भरोसामंद और खुला माहौल कैसे बना सकते हैं ताकि बच्चे फ्रीली बात कर सकें ना घर में जो भी उनकी समस्याएं हैं.
3: एग्जैक्टली, दो तीन बातें जो आजकल बहुत कॉमन हो रही हैं कि लोग अपनी जॉब्स बहुत लूज़ कर रहे हैं, जो बच्चे अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनको भी बहुत स्ट्रगल हो रही है. तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में और यंग के लिए तो बहुत ज़्यादा. अगर आप जाके देखेंगे तो वर्क प्लेस रिलेटेड सुसाइड्स अटैम्प्ट जो होते हैं यहाँ पे दे आर वेरी वेरी वरिंग इवन टू द गवर्नमेंट. और वो तो इंडियन कम्युनिटी भी नहीं है, वो तो जनरल कम्युनिटी है. सो द बिगेस्ट चैलेंज हमारे पास जो है वो है आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंस, कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपको किस तरह की इंडिपेंडेंस चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन जो जेंडर एक्सपेक्टेशन है वो हम इंडियन कम्युनिटी ने काफ़ी हद तक हैंडल कर ली है. वी ट्राई टू ब्रिंग बोथ जेंडर्स टुगेदर इन व्हाट वी एज पेरेंटिंग जो है. बट जो हम पेरेंट्स को एडवाइस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि बी ओपन टू हैविंग चिल्ड्रन गो आउट टू दीज प्रोग्राम्स. जैसे हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है, आप बस अपने बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट भेज रहे हैं, वो बात कर रहा है. क्योंकि एज आई वाज सेइंग बिफोर, इट टेक्स अ विलेज, एक जन पेरेंटिंग पूरी नहीं कर सकता है ना, आपको एक स्ट्रांग वो चाहिए,
1: टीम चाहिए
3: और वो टीम आपको रिलायबल सोर्सेज हों जिनसे, और सब इतने इंटीग्रेटेड नहीं है कम्युनिटी में, जो न्यू कमर्स हैं वो इतने इंटीग्रेटेड
0: नहीं है. Children cannot ask some questions to parents.
2: Yeah.
0: Actually, they cannot ask some questions to a father that they could ask to a mother.
2: Yeah.
0: So, you know, in a community, there are gurus, there are friends, there are elders, there are uncles and aunts and, you know, sisters and cousins. That was a protective thing. But when that is not there, you need to formalize it and give it structure. I think great work you're
3: exactly,
0: doing.
3: Exactly, exactly. Yeah. और हमको जो Indian cultural values हैं उसको, as I was saying, हम लोग जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप उसको बहुत appreciate करती हैं. और मैं अपने बच्चों से हमेशा बोलती हूँ, you are blessed to be born as an Indian background person, because हमारी cultural values eventually the West is also, you know, appreciating. Yoga is a part of the Western lifestyle. We do a lot of pranayama, you know, there's a lot of things. Hamara jo vegetarian diet hai, people are adopting, you know, plant-based, etc. Yeah. So where is all of that coming from? Wo yahin se aa raha hai ki jo Hinduism ya cultural jo India mein hai, wo usme kuch स्ट्रेंथ है जो कि हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा है. सो दैट वे आई थिंक ये प्रोग्राम वही सपोर्ट करेगा कि आपके पास इंडियन कम्युनिटी है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती है इन अ सेफ एनवायरनमेंट.
1: नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है जैसा आप बता रहे हो और बहुत लोग जुड़े ऐसा हम उम्मीद करते हैं. तो आप ये बताइए कि जो महिलाएँ जो हैं वो जुड़ना चाहती हैं गपशप विद आई से, वो कैसे जुड़ सकती हैं और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजनाएँ हैं इसको लेके?
3: धन्यवाद. तो जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो अनीता दीदी, अनीता गुने जी जो आई की डॉटर है, या मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा एक कुटुंब ग्रुप है जिसमें रिचा जी भी हैं वहाँ पे, और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन सब से अवेयर नहीं हैं तो श्री मंदिर जो है अपने ओबोन में, वहाँ पर आई रेगुलर जाते हैं, हम रेगुलर जाते हैं, सम पार्ट ऑफ दी कम्युनिटीज देयर। तो आप किसी से भी रीच आउट करेंगे तो हमको इवेंचुअली, रिचा जी, हम लोग एक फेसबुक पेज पहुँचाएंगे, इट्स क्वाइट अर्ली डेज राइट नाउ, सो हम एक फेसबुक पेज पहुँचाएंगे जहाँ पे पीपल कैन रीच आउट टू अस, और फिर हम उसके बाद उनको एक रेगुलर सेशन देंगे। तो अगर आप आते हैं हमारे पास तो हम आपसे पूछेंगे आप किस बात पर बात करना चाहते हैं कम्युनिटी में, और आप आर यू हैप्पी विद, जैसे अभी तो आई ही है,

0: कि जब हम कोशिश करते हैं थेरेपी पे जाने की, तो वो एक अलग एस्पेक्ट से आपसे बात करते हैं,
1: जी
0: राइट? वो दे
1: जी
0: हैव डिफरेंट ट्रेनिंग्स. यहाँ पे हम एक कल्चरल एस्पेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं जिसके
1: और
0: अंदर
1: पहला स्टेप गोपल जी ये होना चाहिए कि ओपनिंग अप है ना, पहले आप हर चीज़ की शुरुआत जो है एक बातचीत से ही होती है, एंड देन यू कैन टैकल जो भी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम है.
2: बिकॉज़ यू नो द डिजिटल एरा हैज किल्ड कन्वर्सेशन.
1: जी,
2: दैट इज द प्रॉब्लम.
1: इसीलिए बातचीत ही नहीं होती है आजकल.
0: बातचीत
1: तो अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहें तो आप दे दीजिए. और दूसरी बात कि गोपल जी, हमारा एक दर्पण फोरम ग्रुप है, उसमें भी हम डिटेल्स डाल देंगे, आपका फ्लायर डाल देंगे, तो जो भी रीच आउट करना चाहे वो ज़रूर आपसे बातचीत कर देगा. तो
3: सॉरी, ये आपका सेशंस जो होते हैं ये वन ऑन वन होते हैं कि ग्रुप सेशंस होते हैं?
0: अभी वन ऑन वन हो रहा है. एज प्रकाश जी वाज सेइंग, इट्स नॉट अ वन ऑफ. आपको किसी से बात करने के लिए आप उससे मिलेंगे, थोड़ा सा गपशप करेंगे, दैट्स वेयर द काइंड ऑफ टाइटल कम्स फ्रॉम. और उसके बाद आप थोड़ा सा जब व्हेन यू फील कंफर्टेबल, तो आपको लगता है मैं इनसे प्रोफेशनल बात डिस्कस कर सकती हूँ, इनसे पर्सनल बात डिस्कस कर सकती हूँ. क्योंकि एक तो मिलना होता है और एक होता है हम एक अपनी एक अलग ऑरा क्रिएट करते हैं. तो आई हैज़ एवरीथिंग यू नो अंडर वन पर्सनालिटी, बट वैसा हो नहीं पाता है सबके साथ. तो जिसके साथ आपको लगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोफेशनल बातें आप जैसे मेरे से करिए और पर्सनल बातें आप अनीता दी से कर सकते हैं, यू नो दैट वे. सो एक आपको ये होता है, यू जस्ट बाउंस ऑफ योर थॉट्स, राइट? AI ठीक है, अच्छा है, सबके यू नो ऑन योर फिंगर टिप्स है. बट जो जो डाइवर्स एक AI के बारे में शायद सबको पता ही अभी तक, तो कि इट्स ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज यू. वो आपको हमेशा यू नो ट्राइंग टू मेक यू हैप्पी. यू नो आपको ये नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है मैं और इम्प्रूव कर दूंगी, बट दैट इज़ नॉट द केस. अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, हमको लगता है कि दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू लेटर ऑन, तो कोई इंसान ऐसा हो जो आपको बोले कि बेटा इसके बारे में सोचिए, आप दोबारा सोचिए.
2: It because it's based on prior knowledge, even if in the future it can intuit or fake intuit and create
0: hallucinate,
2: its own.
0: Yeah.
2: Can AI get bored? When somebody's talking to you, their eyes light up when you say something, or they smile, or they lose interest. Can AI lose interest? It cannot afford to. It's a commercial product. That's the problem. You need people to talk to.
1: चलिए, काफ़ी हैवी सब्जेक्ट हो रहा है, तो क्यों ना एक ब्रेक लेते हैं और एयरलिफ्ट का ही एक और गीत सुनवाते हैं.
2: अरे
1: बहुत सारे गाने हमारे पास हैं प्रकाश जी के.

0: Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Darpan Hindi Karyakram mein sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413 385 976.
2: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कोपल सिन्हा से और श्री प्रकाश बेलवाड़ी जी से। तो कोपल जी, आप अब देखिए, कार्यक्रम में समय इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है।
3: जी, आप शुरू करें, एक
2: सूचना है। जी,
4: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
2: जी हाँ श्रोताओं, विज्ञापन भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैं कह रही थी कि समय कैसे निकल जाता है जब आप अच्छी बातचीत कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े विषयों पे चर्चा कर रहे हैं। तो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कोपल सिन्हा जी से और बातचीत कर रहे हैं श्री प्रकाश बेलवाड़ी जी से, जो एक्टर, निर्देशक और लेखक भी हैं। तो कोमल जी, आप बताइए कि आप अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी अपने इस प्रोग्राम के बारे में, और अगर आप अपना नंबर देना चाहें तो।
5: धन्यवाद, धन्यवाद ऋचा जी। मैं इसको क्लोजिंग के हिसाब से नहीं, बट मैं एक अलग तरीके से इसको फिनिश करना चाहती हूँ।
2: जी,
5: प्रकाश जी ने बताया, उनकी दो खुद की बेटियाँ हैं। प्रकाश जी भी माइग्रेट करके आए, अपना करियर बनाया, और अब प्रकाश जी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं।
2: जी,
5: तो अगर मैं एक 18 से 25 साल की बच्ची हूँ और मैं आपके पास आऊँ गाइडेंस के लिए अंडर आर इनिशिएटिव, तो आप ऐसा क्या कहेंगे मेरे लिए, हाउ टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कीपिंग इन माइंड के हम सब माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स के बच्चे हैं।
2: वेरी गुड सिनेरियो।
6: यू नो, एज लॉन्ग एज वी थिंक दैट वी डोंट हैव व्हाट वी शुड हैव हैड, एंड यू हैव दिस एंग्जाइटी ऑफ नॉट गेटिंग व्हाट यू थिंक इज योर ड्यू, दिस एंग्जाइटी ऑफ बीइंग डिनाइड, यू नो, यू विल कीप सफरिंग। एक्चुअली यू शुड revalidate the word love. Love is an important word, and if you love to do something, you should go for it. If you love to do something for other people, it is, you get greater motivation, and the disappointment is much easier to handle. Otherwise, if you're self-obsessed and you constantly think about how you're feeling, you'll always keep feeling worse. It's like googling your symptoms. It just like gets worse. I feel you should turn outward and engage with the world, because that is what you inhabit, and you're a creature of this universe. You should look at the universe, and it will relieve you from this personal angst. That's what I would say.
5: Thank you. और एक मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, आज हम सब AI यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे, बड़े जो भी हैं, और वहाँ पे एक पेपर क्लिप फैलेसी है, आपने पता नहीं किसी ने सुनी है कि नहीं।
2: अच्छा।
5: उसमें ये चलता है कि अगर आप AI को बोलिए कि पेपर क्लिप्स बनाएं,
2: जी,
5: तो वो पूरे यूनिवर्स को ग्रेजुअली पेपर क्लिप्स में कन्वर्ट कर देगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैलेसी है, बिकॉज आपने उनको बोला है जो करने को,
2: जी,
5: वो करेंगे, और वो हर चीज़ यूज़ करके फ्रॉम द वर्ल्ड दे विल कन्वर्ट एवरीथिंग टू पेपर क्लिप्स। तो और दूसरी बात जो हमें, ये डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, वी डोंट वांट गो देयर। दूसरी बात हमें सोचने की है कि हम AI इतना पसंद क्यों करते हैं, हमें क्यों इतना अच्छा लगता है, हम सब क्यों यूज करते हैं उसको, क्योंकि वो हमें खुश कर रहा है। तो जैसे प्रकाश जी बोल रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने लिए तो सोचें ही सही, बट आपका कुछ भी प्रोफेशन हो, कुछ भी आपका लाइफ में आप जो कर रहे हैं पर्पस, उसमें ये देखिए कम्युनिटी में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, औरों को कैसे आप खुश कर सकते हैं, तो आपको भी वही इंपॉर्टेंस मिल जाएगी इवेंचुअली जो हमने आजकल AI को दे रखी है। सो थैंक यू सो मच। जिसको कॉन्टैक्ट करना है हमें, वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है 0404 9533366, और अनीता दी और हम दोनों हैं. अनीता दी का नंबर मेरे पास है नहीं अभी स्ट्रेट वे, बट हमारा जो फ्लायर है वो हम शेयर करेंगे वेरी लिबरली.
2: बिल्कुल,
5: और हम दोनों के नंबर हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट
2: हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर और अनीता पंडित का कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे अपने ग्रुप में. सो धन्यवाद आपके समय के लिए. अब हम चलते हैं सुगंधा की तरफ कि आपका क्वेश्चन है प्रकाश जी से.
7: तो जैसे आपने बताया आपने कितने सारे कलाकारों के साथ काम करा है और ये सब, तो आपने इंडस्ट्री में भी कितने साल से हैं आप, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं, इसको एडवाइस स्पेशली द यंग लिसनर्स व्हेन दे डिसाइडिंग व्हाट दे वांटेड इन द फ्यूचर और लाइक समथिंग यू वांट टू जस्ट टेल देम, नॉट इवन एडवाइस, व्हाटएवर यू वांट, व्हाट वुड यू वांट टू से.
6: डोंट बी पैसिव रिसीवर्स ऑफ मीडिया. सी व्हाट हैपेंस इज इवन यू से दैट दे आर नॉट मेकिंग गुड फिल्म्स, you must think you are implicated in it because you're not watching good films, they're not making. If everybody said we don't want concrete homes, we'll have eco-friendly homes, you know, then the developers will do eco-friendly homes. You know, you can't think that steel and concrete is being used and it's polluting the world, and you can't think you're not implicated, it's because of you it's happening. I'm saying to make media better, you should have better taste, you should look for better things, you should be a better person. Then, you know, you'll get a better world. That's what I would say. Because I have this favorite saying which I borrowed from somebody. It's not mine, you know. Don't complain about the traffic. You're the traffic.
7: And is there anything in the industry that you've learned from all your fellow co-stars or anything that you still apply in your life?
6: I have seen that the most successful of industry professionals, you know, in whether in journalism or in cinema, you know, it's only now that I'm doing professional theater, and otherwise I did amateur theater in India, but you know, here I will say this, that professional people, you know, whatever setbacks are there, they don't allow ego to come in the way. They look to understand what went wrong, how, what mistakes they made, they correct themselves and just move ahead, you know. They don't say like we lost the match, you know, so we will not play football again. They don't say, you know, they swallow their pain, live with it, and you know, they try to be better. This is what professionals do, and I think that is the most important thing for anybody who's doing something, because you will have setbacks. Only karma is in your control.
2: जी, मेरा यही अगला सवाल था कि सफलता
6: कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन.
2: तो मेरा अगला सवाल था प्रकाश जी कि असफलता और सफलता को आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपके लिए क्या चीज़ असफल है?
6: When you make a product and it fails, it may not necessarily be the product that failed. It may be the public that fails it sometimes. It may be ahead of its time, or it may not be understood correctly, you know. Good advice is not taken when a professor or a teacher gives sometimes, because you know it's not that the advice itself is bad. And you know, from our side, maybe the way we gave the advice was not good, maybe the way we made the film was not good, the way we did the article I wrote, the tone of it may not have been good, the language used may not have been great, my skills in writing may not be good, my skills in acting may not be good. So you should know why a thing failed. First, we should see what is success. If something makes everyone... See, that's another thing about the digital age. The number of likes you get does not make what you said valid, you know. It's just that if you collect a number of idiots into the room, you know, you can get validated. What does it mean? You know, I had a teacher who once said in a mental hospital that doctor is in a minority of one. But the doctor is right, correct? So I think we should be clear-eyed about what worked and what didn't work, and then we'll see why it didn't work, you know.
2: क्या बात है. और ऐसा कहा जाता है कि ये जिंदगी ही जो है ना, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो एक रंगमंच है, और हम सब जो है इसमें एक्टर्स हैं.
6: शेक्सपियर.
2: तो आप जो है जीवन को अगर एक शब्द में आपको बयान करना हो तो आप क्या कहेंगे?
6: आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द यूनिवर्स and I have to use that instrument because I've been consciousness. I've been given consciousness. I should use that instrument as well as possible.
2: बहुत सुंदर बात. और अगर कौन सा शहर आपको बहुत पसंद है? इतने इंडिया में आप इतने जगहों पर गए.
6: I was born in Bangalore, so Bangalore is my favorite city. If I was not living in Bangalore,
3: traffic.
6: I don't see. You know, you don't look at how your mother is. You know, mm-hmm. She's your mother, right? So I was Bombay. I like Bombay a lot. I think Bombay is a great city. And I think among the cities, although I've been to Seoul, to London, Birmingham, Seattle, New York, Boston, Paris, London, so many places. my favorite place, because I've been coming here for 8 years now, is Sydney. I love Sydney.
2: वही सुनील जी ने भी यही कहा और हम भी चाहते हैं कि सिडनी ही आपका पसंदीदा शहर रहे. तो अगर आप जो है, आप तो एक अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, आपने बहुत लोगों को प्रभावित किया, बहुत लोगों का जीवन प्रभावित किया है, लेकिन आपको कौन प्रभावित करता है? आप किस चीज़ से प्रभावित हैं?
6: At different stages in my life, I had many gurus. My theater guru is Prasanna ji. You know, I learnt a lot from him.
2: जी.
6: When there was a Kannada writer. Thinker, journalist called P. Lankesh. He was a big guru for me. Dr. Anant Murthy, writer, was a big guru for me. But people I have not met also, there are many such gurus, but the people I have not met also have influenced me a lot. I used to like Isaac Asimov, science fiction writer, a lot. I thought he was a very good writer.
2: Mm-hmm.
6: I've been influenced by, many playwrights. I think Brian Friel, Irish playwright, is a great playwright. He's been a big influence on me. I've liked, Shakespeare. I'm very influenced by, very strongly influenced by the Mahabharata. I feel there is nothing greater that I've read a lot of Greek. I shouldn't say lot is too arrogant. I've read some Greek literature and it's very good. I'm not saying no, but
3: actually, we need
6: nothing like the Mahabharata.
3: Because of the time, and actually, we should do more programs.
2: मैं वही सोच रही हूँ कि जितनी नॉलेज आपको है और जितने वर्सटाइल एक्टर हैं आप, आपसे तो बातें और होनी चाहिए. तो आप वादा करके जाइए कि अगली बार फिर आप जरूर पधारेंगे.
6: एनी टाइम ऋषि, योर कॉल आई विल कम.
3: स्पॉन्सर का मैसेज भी दे देते हैं
2: बिल्कुल, और फिर अंत में आपका संदेश श्रोताओं के लिए सुनेंगे.
8: करीमा

0: लेकिन करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: श्रोताओं, एक प्रोग्राम के बारे में भी आपको बताना चाहती थी। सुर और एहसास का कार्यक्रम हो रहा है, गज़लों का प्रोग्राम है और गायक हैं सिडनी के जाने माने श्री अंकुर, डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव जी। बहुत ही अच्छे जो है वो गाने गाते हैं और कहने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। ज़रूर अटेंड कीजिए। ये कार्यक्रम हो रहा है अगले सैटरडे 11th of July को। पूरी जानकारी के लिए आप दर्पण फोरम में उनका फ्लायर हमने डाला है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं और टिकट बुक कर सकते हैं। तो ज़रूर इस कार्यक्रम को देखिए, बहुत ही सुंदर गीतों का ये प्रोग्राम होने वाला है। तो आइए लौटते हैं फिर समापन की ओर। और प्रकाश जी, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या एक सूत्र देना चाहते हैं?
0: आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट वन थिंग एंड जस्ट बिकॉज यू आस्क द क्वेश्चन आई एम आंसरिंग इमीडिएटली। यू नो, यू लिव इन सिडनी, यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, whenever you come to some place, I know you know India and your town or city in India is, you know, is your favorite, it's that's your mother place, but you come here, this is your karma bhumi. To belong here, you should transcend just being Indian and you should become Australian as well, and you know, you should be able to do professional, when you, otherwise your children, you know, they'll be second class, you know, in imagination. What will happen is then I don't have the roots there, and they don't actually they will be like marginal citizens here in some ways. For them to be full Australians, they should not just watch cricket, maybe they should watch, however violent it is, you know, Australian football. I know they should participate in Australian imagination, in their politics. You know, you should be able to do theater, should learn its literature, you know, engage with the problems, the climate, you know, look at how your you know, natural parks and sanctuaries have been done.
2: चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने
0: कही। You should do that. You should become Australian.
2: तो कोमल कोपल जी और प्रकाश जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।
0: नमस्कार, थैंक यू।
3: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
4: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में, ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।
5: नहीं सपना, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं।
6: तुम क्या जानो, मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो, जिसने तुमसे प्यार किया है।